0: अस्सलाम वालेकुम सामीन, पेशा खिदमत है प्रोग्राम जापानी खाने पकाएं।
1: सामीन आदाब, वक्त हुआ है प्रोग्राम जापानी खाने पकाएं का। माह अप्रैल और मई में हम चंद सेहत बख्श खानों की तरक्की पेश कर रहे हैं। हम ऐसे खाने मुतारिफ कराएंगे जो रोजमर्रा तर्ज जिंदगी से मुतल्लिका बीमारियों से बचाव में मददगार होते हैं।
2: हमारा मौजू है हाई ब्लड प्रेशर यानी बुलंद फिशार खून से बचाव। नमक का कम इस्तेमाल सेहत के इस मसले से बचाव में मददगार साबित होता है।
1: और एक बार फिर हमारे साथ हैं हमारी खाना पकाने की माहिर मोहतरमा आकिको वातानाबे, जो आज हमें कम नमक से तैयार करदा एक खाने की तरकीब बता रही हैं।
3: कोनिचिवा, वातानाबे आकिको देस। क्यों त्सुकुरु नो वा गेनगेन टेरियाकी चिकन देस।
2: आदाब, मैं आकिको वातानाबे हूँ। आज हम कम नमक वाला तेरियाकी चिकन बनाना सीखेंगे। अपने एक गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम तेरियाकी चिकन बनाना सिखा चुके हैं, लेकिन आज की तरकीब में हम जायका ख़त्म किए बगैर नमक की निसफ मकदार इस्तेमाल करेंगे।
1: सबसे पहले चार अफराद के लिए तेरियाकी चिकन बनाने के अज्जा नोट फरमा लीजिए। आपको दरकार होगा 500 ग्राम मुर्गी का रान का गोश्त, यह हड्डी के बगैर मुर्गी के गोश्त के दो टुकड़े। ख्याल रहे कि ये गोश्त खाल समेत हो। इसके अलावा आपको ज़रूरत होगी थोड़े से पोटैटो स्टार्च यानी आलू के नशास्ता, और मुर्गी को पकाने के लिए एक खाने का चम्मच सब्जियों के तेल की। मज़ीद दरकार होगा 50 मिलीलीटर सेब का रस, 1 और 1/3 खाने का चम्मच सोया सॉस, 2 चाय के चम्मच चीनी, 1 चाय का चम्मच सिरका और 5 ग्राम अदरक।
2: तो आइए बनाने का आगाज करते हैं। सबसे पहले पकाने के लिए मुर्गी का गोश्त तैयार कीजिए। मुर्गी की एक रान को किसी कटिंग बोर्ड पर इस तरह रखिए कि खाल वाले सिमत नीचे की जानिब हो। मुर्गी के रान के दरमियानी हिस्से में एक खलासा होता है, इसी जगह से काटते हुए रान के गोश्त के 2 टुकड़े बना लीजिए। दूसरे रान के भी इसी तरह 2 टुकड़े कर लीजिए। इस तरह मुर्गी के 4 फ्ले बन जाएंगे। मुर्गी की रान का गोश्त निस्बतन सख्त होता है, लिहाजा अगर आप इसे इसी तरह पकाएंगे तो गोश्त सुखड़ जाएगा और इसे मुकम्मल तौर पर गलाना मुश्किल होगा। तो आइए पहले इन टुकड़ों की मोटाई बराबर कर लेते हैं।
1: छुरी को हर फिले के वस्त से उफकी गुजारते हुए अतराफ के सिरों तक इस तरह ले जाएं कि गोश्त का टुकड़ा दाएं और बाएं खुल जाए। ख्याल रखिए कि सिरों पर गोश्त को जुड़ा रहने दीजिए। गोश्त की मोटाई का अंदाज़ा लगाते रहिए और एक वक्त में एक जानिब से काटिए। गोश्त की मोटाई को एक जैसा बनाने के लिए कटाई का दुरुस्त अंदाज़ा कीजिए।
2: फ्लेम में शिगाफ लगाने के लिए छुरी को कटिंग बोर्ड के मुतवाजी रखिए और छुरी की धार गोश्त से गुजारते हुए अपनी जानिब लाइए। हमवार अंदाज से काटने के लिए छुरी की धार के नोक वाले अगले हिस्से को इस्तेमाल करें और आहिस्ता आहिस्ता काटें।
1: चिकन को इस अंदाज में काटने के बाद इसे खोलिए। फिले के दूसरे हिस्से को खोलने के लिए भी इसी तरह कट लगाइए। गोश्त के वस्ती हिस्से से एक तनासब के साथ अतराफ की जानिब काटने के तरीक़ाकार को जापानी में कानोन बिराकी कहा जाता है। यह नाम बुद्धा के मुजस्मे कानून को महफूज रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले डिब्बों से निकला है। इन डिब्बों के दरवाजे इसी तरह वस्त से अतराफ में खुलते हैं। मिसाल के तौर पर अंग्रेज़ी में इस अंदाज में खुलने वाले दरवाज़ों या काटने के इस तरीके को फ्रेंच डोर कहा जाता है। उर्दू में इस तरह दरवाज़ा खुलने को हम दरवाजे के पट वा करना कहते हैं।
2: अब चिकन फ्ले की सतह अपने साइज से दुगनी हो गई है और इसकी मोटाई पहले के मुकाबले में निसफ रह गई होगी। मुर्गी के चारों फ्ले इसी अंदाज में काट लीजिए। एक ट्रे में पोटैटो स्टार्च फैलाइए और फ्ले ऊपर रख दीजिए।
1: फ्ले की दोनों अतराफ पर अच्छी तरह पोटैटो स्टार्च लगाइए। एक पतली और हमवार तह के लिए काफी ज्यादा स्टार्च इस्तेमाल कीजिए और फिर हाथ से थपथपाकर इजाफी स्टार्च हटा दीजिए। इसके बाद तेरियाकी सॉस बनाने के लिए मसालों को मिला लीजिए। आज की तरकीब में सॉस को कलीदी हैसियत हासिल है। आमतौर पर तेरियाकी सॉस की तैयारी में सोया सॉस اور چینی جیسے بنیادی اجزاء استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن سویا سوس میں سوڈیم کی کافی زیادہ مقدار پائی جاتی ہے، لہذا ہم سویا سوس کی مقدار کو نصف کرتے ہوئے سیب کا رس، سرکہ اور کدوکش کی گئی ادرک استعمال کریں گے۔ بھرپور مہک کے ساتھ ان مسالوں سے ڈش کا مزہ دوبالا ہو جائے گا اور کم نمک سے بنی ایک بہت فائدہ مند ڈش تیار ہو جائے گی۔
2: ایک چھوٹے پیالے میں سویا سوس اور چینی ڈال کر ملائیے۔ اب اس میں سرکہ، کدوکش کی ہوئی ادرک اور سیب کا رس بھی ڈالیے اور یکجاں کرنے کے لیے اچھی طرح ہلائیں۔ اب سوس تیار ہے تو آئیے مرغی کو پکانے کا آغاز کرتے ہیں۔
1: تمام فلے ایک ساتھ پکانے کے لیے ایک بڑا فرائی پین استعمال کیجیے۔ پوٹیٹو سٹارچ میں تیل جذب ہو جاتا ہے، لہذا عمومی مقدار سے کچھ زیادہ تیل استعمال کیجیے۔ جب فرائی پین گرم ہو جائے تو اس میں اس طرح فلے رکھیے کہ کھال والا حصہ نیچے کی جانب ہو۔

0: के टुकड़ों को दरमियानी आंच पर पकाइए। इस दौरान उन्हें हिलाते रहिए यहाँ तक कि यकसां सुनहरी हो जाएं। फिले को सुनहरी करने से गोश्त की इश्तिहा बढ़ जाएगी, देखने में खुशनुमा दिखाई देगा और महक भी मज़ेदार होगी।
1: जब मुर्गी के तमाम टुकड़ों की रंगत खूबसूरत सुनहरी हो जाए तो इन्हें पलट दीजिए। फ्राई पैन को किसी ढक्कन से ढांप दीजिए ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। धीमी आंच पर मजीद 4 मिनट पकाइए।
2: यकेता देशो का मिते मिमाशो।
0: आइए देखते हैं कि फिले तैयार हुए या नहीं। एक कांटा या लकड़ी की सीख गोश्त के मोटे हिस्से में डालिए। अगर मुर्गी के टुकड़े से निकलने वाला पानी शफाफ हो तो गोश्त गल चुका है।
1: फिले पक जाएं तो आंच बंद कर दीजिए और इन्हें फ्राई पैन से बाहर निकाल लीजिए।
0: मुर्गी की इजाफी चिकनाई साफ कर दीजिए क्योंकि इजाफी तेल की वजह से तेरियाकी सॉस अच्छी तरह मुर्गी के टुकड़ों पर नहीं लग पाएगी और यह है अगला मरहला।
1: सॉस को फ्राई पैन में उंडेलिए। हो सकता है कि सॉस में मौजूद चीनी तह में बैठ जाए, लिहाजा बेहतर ये होगा कि पहले ही इसे हिला लें। पैन को धीमी आंच पर गर्म कर लीजिए। जब सॉस में उबाल आ जाए तो मुर्गी के फिले वापस पैन में डाल दें। मुर्गी तो पहले ही गली हुई है, लिहाजा आपको बस ये करना है कि सॉस अच्छी तरह इन टुकड़ों पर लग जाए।
0: चिकन पर अच्छी तरह सॉस लगाने के लिए मुर्गी के टुकड़ों को उलट पलट कीजिए। इन पर लगे पोटैटो स्टार्च की बदौलत तेरियाकी सॉस को गाढ़ा होने में मदद मिलेगी।
1: जब मुर्गी के तमाम टुकड़ों पर सॉस लग जाए तो उन्हें इस तरह प्लेट में निकालिए कि खाल वाले समत ऊपर की जानिब हो। जब ये कुछ ठंडे हो जाए तो उन्हें 1 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टियों की शक्ल में काट लीजिए और एक प्लेट में तरतीब दें। सलाद, ब्रोकली, खीरा और लीमो की काशों से सजावट कीजिए।
2: एंबू वा चोट्टो शिका त्सुकत्ते नाई नो नी काओरी तो उमामी तत्तुरी नो तेरियाकी चिकन नी शियागारीमाशिता।
0: अगर चीज तरकीब

0: तो आइए एक बार फिर तरकीब दोहरा लेते हैं। ये कम नमक वाली तेरियाकी चिकन की तरकीब चार अफराद के लिए है। आपको दरकार होगा 500 ग्राम मुर्गी का गोश्त या हड्डी के बगैर मुर्गी के दो राने, थोड़ा सा पोटैटो स्टार्च, एक खाने का चम्मच तेल, 50 मिलीलीटर सेब का रस, एक और एक तहाई खाने का चम्मच सोया सॉस, दो चाय के चम्मच चीनी, एक चाय का चम्मच सिरका और 5 ग्राम अदरक।
1: सबसे पहले एक कटिंग बोर्ड पर मुर्गी की रान का गोश्त फैलाइए। रान के गोश्त में खलासा होता है, दोनों रानों को इसी हिस्से से काट कर निसफ कर लीजिए। इस तरह गोश्त के चार फिले बन जाएंगे। हर फिले की मोटाई यकसा करने के लिए मुर्गी के गोश्त के फरबा हिस्से की जानिब से वस्त में छुरी रखते हुए बारी बारी दोनों अतराफ की जानिब काटिए, लेकिन सिरों को जुड़ा रहने दीजिए। इस तरह जब कटे हुए हिस्से को खोला जाएगा तो फिले की सतह का साइज दुगना हो जाएगा। चारों फिले इसी अंदाज में काटने के बाद इन पर अच्छी तरह पोटैटो स्टार्च यानी आलू का नशास्ता छिड़क दीजिए और फिर इजाफे नशास्ता झाड़ दीजिए।
0: अब तेरियाकी सॉस तैयार कीजिए। एक छोटे प्याले में सेब का रस, सोया सॉस, चीनी, सिरका और कद्दूकश की हुई अदरक डालकर मिक्स करें। एक बड़े फ्राई पैन में तेल डालिए और मुर्गी के टुकड़ों को इस तरह पैन में रखिए कि खाल वाली संत नीचे की जानिब हो। दरमियानी आंच पर पकाते हुए इन्हें थोड़ा सा हिलाते रहिए, यहाँ तक कि उनका रंग खूबसूरत सुनहरी हो जाए। अब उन्हें पलट दीजिए और फ्राई पैन को एक ढक्कन से ढांप कर गोश्त को मजीद 4 मिनट तक धीमी आंच पर पकाइए। एक कांटा या लकड़ी की सीख मुर्गी के टुकड़े में डालकर गलने का अंदाज़ा कीजिए। अगर गोश्त के टुकड़े से निकलने वाला पानी की रंगत शफाफ दिखाई दे तो इन टुकड़ों को प्लेट में निकाल लीजिए।
1: फ्राई पैन से इजाफी चिकनाई साफ करके तेरियाकी सॉस उंडेलिए। जब सॉस गर्म हो जाए तो मुर्गी के पके हुए टुकड़ों को फिर से पैन में डालकर हिलाएं ताकि सॉस इन पर लग जाए। जब सॉस गाढ़ी हो जाए और मुर्गी के टुकड़ों पर अच्छी तरह लग जाए तो उन्हें इस तरह बाहर निकालें कि खाल वाली सिमत ऊपर की जानिब हो। फिले कुछ ठंडे हो जाएं तो 1 सेंटीमीटर चौड़ी पट्टियों की शक्ल में काट लीजिए। हरी सब्जियों और लेमू के काश के साथ एक प्लेट में तरतीब दीजिए। लीजिए, आपका तेरियाकी चिकन तैयार है।
0: और सामिन, अब वक्त हुआ है खाना पकाने के बारे में मालूमात का। ये ऐसी मालूमात है जो खाना पकाने के लुत्फ को दुबाला कर दें। आज हम कम नमक के खानों के बारे में आपको कुछ मालूमात देंगे।
1: नमक से खानों का जायका उम्दा हो जाता है, लेकिन सोडियम का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल सेहत के बहुत से मसाइल को जन्म देता है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर यानी बुलंद फिशार खून और दिल की बीमारियां वगैरह। गो के वाशुक यानी जापानी खाने सेहत बख्श तसव्वुर किए जाते हैं, लेकिन हैरान कुन बात यह है कि इनमें काफ़ी नमक मौजूद होता है। जापानी अफराद औसतन 11 ग्राम नमक यौमिया इस्तेमाल करते हैं। आलमी इदारा सेहत यौमिया 5 ग्राम से कम नमक का इस्तेमाल तजवीज़ करता है।
0: 5 ग्राम का मतलब है एक चाय का चम्मच। अपने तौर पर नमक का इस्तेमाल तर्क करने का मतलब तो यही है कि आप खानों से हासिल होने वाली खुशी को ख़त्म कर दें। हत्ता कि अगर आपको इल्म भी हो कि नमक का कम इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए अच्छा है, तब भी कम नमक की गजाई आदत बरकरार रखना एक मुहिम के मतरादिफ़ है।
1: कम नमक वाले चिकन तेरियाकी की इस तरकीब में ऐसी ही आम तरकीब के मुकाबले में नमक की निस्फ मिकदार इस्तेमाल की गई है, लेकिन फिर भी ये रस, सिरका और अदरक की वजह से मज़ेदार लगता है। कम नमक वाली गजाई आदत बरकरार रखने के लिए तेज़ जायकों वाली अशिया इस्तेमाल करना एक तरीका हो सकता है।
0: एक और तजवीज़ सोया सॉस का मौसर इस्तेमाल है। अगरचे इसमें सोडियम की काफ़ी मिकदार मौजूद होती है, तहम इसमें नमक की सोडियम की मिकदार महज 5वां हिस्सा होती है। अपने मुनफरद जायके की वजह से सोया सॉस की थोड़ी सी मिकदार का इस्तेमाल ही तसल्ली बख्श होता है। थोड़ी सी मालूमात से हम अपनी ग़िज़ा में नमक की मिकदार कम कर सकते हैं। हमने खाना पकाने की अपनी माहिर आकीको वातानाबे से पूछा कि वह अपने रोज़मर्रा पकवानों में कम नमक का इस्तेमाल कैसे करती हैं।
1: जापानी खानों में स्टू और उबाल कर बनाए जाने वाले तरह तरह के खाने शामिल हैं, जिनमें सोडियम काफ़ी मकदार मौजूद होती है, ख़ासतौर पर स्टू जिसमें हम चाहते हैं कि जायका खाने के अंदर तक जज्ब हो जाए। तो हाल ही में मैंने दाशी यखनी में स्टू के अज़ा डालकर

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: यह है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का आपके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से। मैं स्वीकार करें अपनी सखी शांग्रिला जैन का कोनिच्वा नमस्कार और आदाब।
1: सभी दोस्तों को कामायनी सिंह का भी कोनिच्वा नमस्कार। आज के अंक में हम लाए हैं आपके पत्र और हिंदी फिल्म जगत के अभिनेता पंकज त्रिपाठी से खास भेंट वार्ता का तीसरा और अंतिम भाग।
0: हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता पंकज त्रिपाठी बिहार दिवस कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए 24 मार्च को जापान आए थे। उनकी इस जापान यात्रा के दौरान हमें भी उनसे बात करके रंगमंच से उनके प्रेम और जापान यात्रा के उनके अनुभव जानने का मौका मिला। उनके साथ हुई इस बातचीत को हम दो अंकों में अपने श्रोताओं के लिए ला चुके हैं।
1: वैसे क्या आप जानते हैं, रुपहले पर्दे पर विविधतापूर्ण किरदारों से अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले पंकज त्रिपाठी की जीवन यात्रा भी उतनी ही रोचक और विविधताओं से भरी हुई है। बिहार के सुदूर ग्रामीण अंचल में एक किसान परिवार में जन्मे पंकज जी ने शुरू में होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और एक होटल में काम भी किया। इसी दौर में उनका रुझान रंगमंच की ओर बढ़ा और हमें मिला एक कमाल का अभिनेता। वहीं 1999 में एक नाटक में हिस्सा लेने के सिलसिले में उनकी जीवन की पहली विदेश यात्रा जापान के लिए थी।
0: लेकिन ख्याति थोड़ी दूर थी और संघर्ष लंबा था। पटना में रंगमंच के 8 साल, फिर मुंबई में 8 साल तक छोटे छोटे बेनाम से रोल, टेलीविजन और एड फिल्मों में काम करते हुए उन्हें पहचान मिली गैंग्स ऑफ वासेपुर के सुल्तान से, जिसमें अपनी बोलती आंखों और दमदार अभिनय से पंकज त्रिपाठी ने लोगों के मन में गहरी छाप छोड़ दी। उसके बाद उनके हर किरदार में लोगों ने खुद को पाया, उसमें उन्हें एक अपनापन मिला। पंकज जी का व्यक्तित्व जितना मृदुल और सरल है, उतना ही सहज है उनका अभिनय।
1: उनसे हुई बातचीत के तीसरे अंक में आइए सुनते हैं उनके फिल्म जीवन से जुड़ी कुछ मजेदार बातें।
0: तो गांव की पगडंडी से चलते हुए रुपहले पर्दे तक का ये सफर कैसा रहा? क्या ऐसा कोई लम्हा आया आपने सोचा कि अब बस बहुत हुआ, अब कुछ और काम करते हैं, और ये संघर्ष जारी रखने की हिम्मत कहाँ से आई?
2: नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि अब बहुत हुआ बस छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं किसान परिवार से आता हूँ, गाँव में खेतीबाड़ी किया है। हमें आदत है कि एक सीड को डाल के और 15 दिन प्रतीक्षा करते हैं कि वो पौधा बनेगा, और फिर 4-5 महीने प्रतीक्षा करते हैं कि उसमें फल आएंगे। तो कहीं ना कहीं से धीरज और धैर्य की ट्रेनिंग मुझे किसानी में मिल गई, तो ऐसा कभी नहीं आया। संघर्ष लंबा था और होना चाहिए, संघर्ष जितना लंबा हो सफलता में आनंद उतना ही आता है या खुशी मिलती है कि हमने परिश्रम किया तो उसका परिणाम मिला। तो मेरा कभी मन नहीं दुखी हुआ, टूटा, हौसला रहा है बरकरार।
0: आप सहज अभिनय के लिए जाने जाते हैं, इस सहजता को बनाए रखने के लिए क्या कोई खास तैयारी की जाती है? कितनी मेहनत लगती है सहज बनने के लिए? सरल होना सबसे कठिन है,
2: कठिन
0: तो इसके लिए कितनी मेहनत लगती है?
2: मेहनत मेरी बुनावट वैसी है, तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका जैसा होगा हार्डवेयर वैसा ही रिएक्ट करेगा। तो मैं सहज व्यक्ति हूँ और आर्ट में भी मैं सहजता चाहता हूँ कि वो कॉम्प्लेक्स ना हो। हर किस्म, हर स्तर का आदमी मेरी परफॉर्मेंस को, मेरी कहानियों को समझ जाए, कम कॉम्प्लिकेटेड हो। तो यस, एफर्टलेस जो बोलते हैं ना, कि सहज देखने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सहजता भी ऐसा नहीं है, तो प्रैक्टिस किया हूँ मैं और कर रहा हूँ आज भी।
0: तो आपने हर तरह का किरदार बखूबी निभाया, लेकिन आपके अंदर के कलाकार को सबसे ज़्यादा मज़ा कैसा किरदार करने में आता है?
2: जो रिलेटेबल हो, जो लाइफ से जुड़ा हुआ हो, पॉजिटिव हो, इंस्पायरिंग हो, जो प्रेरणा देने वाला हो, क्योंकि सिनेमा मनोरंजन के साथ साथ एक मुझे इंस्पिरेशन का भी मीडियम लगता है कि आप उससे आर्ट का, कलाओं का, वो पोइट्री हो, कहानी हो, कविता हो, सिनेमा हो, उसका एक पर्पस ये है कि आज दुखी जो व्यक्ति है उसके दुखी मन को एलिवेट कर दे, उसमें एलिवेटेड इमोशन ला दे, ताकि वो इंस्पायर हो और वो अपनी ग्रोथ की ओर आगे बढ़े।
0: तो गैंग्स ऑफ वासेपुर का सुल्तान, जिसने आपको एक पहचान दिखाई, और मिमी का, भानु का जो किरदार था जिसने आपको राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया, और मेट्रो इन दिनों का एक सेंसिटिव संवेदनशील पति, इन तीनों किरदार को अगर हम साथ रखें तो आपके दिल के करीब सबसे कौन है?
2: हाँ, मेरे दिल के करीब तो मेट्रो इन दिनों का होगा क्योंकि रिसेंट है और वो अर्बन कॉम्प्लेक्स है उस किरदार में, कि शहर में रहता है, मिड एज का हो चुका है, तो वो अर्बन कॉम्प्लेक्स है और वो कैसे लाइफ में स्पाइस भरने के लिए एक छोटी सी गलती करता है और उस गलती से क्या क्या परिणाम होते हैं, तो वो ज़्यादा कंटेम्प्रेरी कहानी है इसलिए वो, और रिसेंट है इसलिए वो करीब है। बाकी मिमी भी बहुत अच्छा है क्योंकि उसकी वजह से नेशनल अवार्ड मिला है, उसमें एक कमिटमेंट है उस किरदार में कि अगर वो कृति सेनन के किरदार को साथ देता है, अपने स्वार्थ के लिए जुड़ता है, लेकिन जब वो फंस जाती है तो उसके साथ थ्रू आउट खड़ा रहता है। उसका एक संवाद था कि वो बोलती है कि तुम भाग सकते थे मुझे छोड़ के, तुम गए क्यों नहीं, तो बोलता है कि हम ड्राइवर हैं मिमी जी, यात्री को बिठा लिया तो मंजिल पे छोड़ के ही जाते हैं, रास्ते चाहे जितने ख़राब हों। तो मैंने आपके इस परिस्थिति का एक जिम्मेदार मैं भी हूँ, तो मैं अभी जर्नी पूरी करके ही जाऊँगा। तो वो दुनिया में वैसे लोग होने चाहिए भानु की तरह, जो मिमी का किरदार है, कि तभी तो दुनिया बेहतर रहेगी, हम जब एक दूसरे के काम आएंगे, एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, हौसला देंगे।
0: आपने कहा कि स्क्रीन फटीग हो रही है लोगों को, फिर भी ओटीटी भी है, सिनेमा भी है, तो इन दोनों में क्या करना ज़्यादा मज़ा आता है आपको? और आने वाले समय भविष्य किसका है, सिनेमा का या ओटीटी का?
2: दोनों का है, ओटीटी तो एक प्लेटफॉर्म है, वो सिनेमा भी उस पर ही आता है, वो आसान है, वो आपके ड्राइंग रूम तक, आपके जेब तक है कि आप अपने जेब में कंटेंट निकाल के जब मन तब देख लीजिए। ग्रोथ तो दोनों का होगा और रीच, दोनों की रीच बढ़ रही है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है एक आम दर्शक के लिए, लेकिन अगेन वही बोलूँगा कि कितना स्क्रीन देखोगे, एक दिन आपको वापस आना ही पड़ेगा। अब हम घरों में करने लगे हैं ना कि डिनर के टाइम फोन रख दो, हम बातचीत, खाना खाते और बातचीत करते हुए खाएंगे, तो ये स्क्रीन हमारे जीवन में असुविधा तो पैदा कर ही रहा है। मोबाइल आया था, हमने बनाया था मोबाइल कि हम चलाएंगे, अब मोबाइल हमें चला रहा है।
0: तो फिल्म को चुनते हुए आप क्या चीज़ ध्यान में रखते हैं? अब आप उस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि आप अपना रोल तय कर सकते हैं, या आपको किस बैनर के साथ काम करना है, कहानी है, निर्देशक है, या किरदार, या सह कलाकार, क्योंकि वो अच्छा टीम वर्क होना भी ज़रूरी है, तो आप क्या किसको तवज्जो देते हैं?
2: अच्छी कहानी, कहानी रिलेटेबल हो, उससे जुड़ा हो और मुझे एक्साइट करे, तो ऐसी अच्छी कहानी मिल गई तो मैं उसका हिस्सा बन जाता हूँ। आजकल नहीं मिल रही अच्छी कहानी, या तो थोड़ा कम कर दिया है काम, या मुझे बहुत ज़्यादा नहीं करना है, मुझे जितना करना था कर लिया, अब सेलेक्टिव काम करना है, वही कहानी जो मुझे लगे कि हाँ इस कहानी का हिस्सा बनना है तो मैं जुड़ जाता हूँ, कर लेता हूँ।
0: शूटिंग से पहले मैंने सुना कि आप खिचड़ी खाना पसंद करते हैं, इसकी क्या वजह है?
2: नहीं, क्योंकि एक एक्टर के लिए उसका पाचन तंत्र सही होना बहुत ज़रूरी है, एक्टर के लिए नहीं, हर व्यक्ति के लिए, लेकिन कलाओं परफॉर्मर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपका इंस्ट्रूमेंट मेरा यही है, मेरे पास सारंगी, तबला, सितार, कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जिस इंस्ट्रूमेंट को मैं बजाता हूँ, परफॉर्म करता हूँ, वो मेरा शरीर है, और शरीर दुरुस्त रहेगा तभी मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगा, उसके लिए सबसे आवश्यक है पाचन, तो पाचन सही रहेगा तो सब सही रहेगा, इसलिए मैं खिचड़ी खाता हूँ।
0: तो ऐसी कोई भूमिका जो अभी भी आपका ड्रीम रोल है कि मुझे ये, क्योंकि अटल में आपने, मैंने जो देखा अटल जी के, आपने जो मैनरिज्म
2: जी
0: अपनाए हैं, उनके हाथ हिलाने का तरीका, सिर हिलाने, कमाल का था वो। तो ऐसी कोई भूमिका है जो अब भी आपका ड्रीम रोल है?
2: नहीं, ऐसी कोई भूमिका नहीं है, जो अच्छी स्क्रिप्ट लगती है उसी को ड्रीम स्क्रिप्ट बना लेता हूँ।
0: आपकी हिंदी इतनी शुद्ध है, और आज मीडिया हो या फिल्में, हर जगह भाषा का स्तर थोड़ा डगमगाया हुआ है, तो ऐसे में एक कलाकार की समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी हो सकती है? शब्दों में दिक्कत है।
2: शब्दों में बहुत ताकत है, इसलिए जब भी प्रयोग करें, इस्तेमाल करें, सोच समझ के करें कि शब्द जो है वो सम्मान भी दिलाते हैं और शब्द जो भी है जो है वो अपमान भी दिलवा देते हैं, तो इसलिए वाणी पे ना नियंत्रण होना अति आवश्यक है। और हम कम्युनिकेटर हैं हम लोग, अगर हमारी कहानियाँ ज़्यादा लोग देखते हैं, मुझे ज़्यादा लोग जानते हैं, तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि मैं कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन, जीवन में भी वो बहुत ज़रूरी है, और उसको लेके अवेयरनेस होनी चाहिए एक कलाकार में, एक आम आदमी में भी।
0: पर ओटीटी की बात करें जो बहुत युवाओं में भी एक्सेसिबल है, पर उसमें तो काफ़ी भाषा का जो है स्तर काफ़ी नीचे है, तो क्या लगता है आपको कहाँ रोक लगनी चाहिए?
2: हाँ, ओटीटी मैम, अगर फिर सोचना देखना पड़ेगा कि ओटीटी जो है वो प्राइवेट व्यूइंग के लिए है, वो कम्युनिटी व्यूइंग की चीज़ नहीं है। तो प्राइवेट व्यूइंग में एक इंडिविजुअल की का फ्रीडम है कि वो प्राइवेट में क्या देखे। उसके लिए आपको अकाउंट बनाना होगा, पेमेंट एक्सेस करना होगा और फिर आप पर्सनल स्क्रीन पे देखें अपने। तो वहाँ चूंकि सेंसर नहीं है और उनको लगता है कि सोसाइटी को, समाज को जस का तस रखना है, समाज में जैसा है वैसा हम दिखा सकते हैं, सेंसर नहीं है। सेंसर क्यों नहीं है? क्योंकि ये कम्युनिटी व्यूइंग नहीं है। तो एक इंडिविजुअल के पास राइट्स हैं कि वो क्या खाए, वो क्या देखे, वो क्या पहने। तो इसलिए ये बहस जो है ना, शोर की एक स्टोरी टेलर के नाते मेरा सेल्फ सेंसर है कि मैं कहानी में कैसे दिखाऊंगा, कितना दिखाऊंगा। लेकिन उसके कई लोग फ़ायदा भी उठा लेते हैं। तो ये डिपेंड है इंडिविजुअल के ऊपर। आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बंद कर दीजिए।
0: एक चीज़ जो हमने भारतीय जो यहाँ रह रहे हैं उन्होंने नोटिस करी है कि आजकल भारतीय पर्यटक तो बहुत आ रहे हैं और जापान काफ़ी लोकप्रिय होने लगा है भारतीय लोगों में। तो आने वाले समय में क्या हम यहाँ पर जापान में फिल्मों की शूटिंग होती हुई भी देखेंगे? आपका क्या सुझाव है इस बारे में?
2: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि भारतीय सिनेमा इन टर्म्स ऑफ लोकेशन ग्लोबल हो ही रहा है, लोग जाते ही हैं। चूँकि वेस्ट ज़्यादा गए हैं, यूरोप ज़्यादा गए हैं, अब ईस्ट में भी आएंगे। अब ये अनएक्सप्लोर्ड है हमारे सिनेमा के लिए, यहाँ की लोकेशन कहानियाँ। तो ऑफ कोर्स आएंगे आने वाले समय में, मुझे दिख रहा है। जैसे भारत कहीं नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा था, वो हिंदी सिनेमा से अधूरा था। अभी लोम भेड़िया गई वहाँ पे, अमर कौशिक ने किया, चूँकि अमर कौशिक अरुणाचल में रहे हैं, बचपन पला बड़ा है। तो जब वहाँ नॉर्थ ईस्ट में आ रहे हैं तो फार ईस्ट में आएंगे ही थोड़े दिनों में। अब धीरे धीरे ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है हिंदी सिनेमा के लोकेशंस और कहानियाँ।
0: आखिरी अनुरोध, NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा पिछले 70 साल से निर्बाध प्रसारण कर रही है। दशकों से दुनिया भर से हमारे कई श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए कोई खास संदेश?
2: नहीं, मैं तो काफ़ी प्रसन्न हूँ जान कर कि 70 सालों से जापान में हिंदी की सेवा एक लगातार प्रसारित हो रही है। बहुत मतलब प्रशंसा का योग्य है और आज तक आबाद रूप से कभी टूटा नहीं है इस क्रम। तो प्रशंसा के पात्र हैं NHK जो यहाँ का नेशनल प्लेटफॉर्म है। और थैंक यू सो मच, मुझे भी मौका दिया अपनी बातचीत साझा करने के लिए। और आप सबको शुभकामनाएं और थैंक यू।
1: हिंदी फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध अभिनेता पंकज त्रिपाठी के साथ 3 कड़ियों में प्रसारित बातचीत का ये सिलसिला आपको कैसा लगा जरूर बताएं। आपके पत्रों और प्रतिक्रिया का हमें इंतजार है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ये पत्र ले रही हूँ जिसे भेजा है मुंबई से मंजूश्री भंडारी ने। उन्होंने पंकज त्रिपाठी जी के साथ वार्तालाप को बेहद रोचक बताया। वे आगे लिखती हैं, जो सहजता उनके अभिनय में है वही बातचीत में झलक रही थी। फिल्मों के साथ साथ वे पाक कला में भी निपुण हैं, ये जानकर बड़ा अच्छा लगा। जापान को उन्होंने केवल एक पर्यटक के रूप में ही नहीं बल्कि एक कलाकार की दृष्टि से भी देखा। देश विदेश भ्रमण करते हुए वहां की लोक कलाएं, आचार विचार, खान पान पर विशेष ध्यान देना जरूरी है, तभी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपने जापानी लोक कला काबुकी के बारे में रोचक जानकारी दी। जापान में जिस तरह लोक कलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है वो काबिले तारीफ है। आशा है वहां बसे हुए भारतीय जापानी जीवन के अनुशासन को जरूर आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। पंकज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जिस तरह जापान में बिहार दिवस मनाया जा रहा है उसी तरह भारत के प्रांतों में भी जापान दिवस मनाया जाना चाहिए। चरी के देश से कार्यक्रम में आप हमें विभिन्न कलाकारों के बारे में जानकारी देते हैं, उसके लिए धन्यवाद।
0: मंजूश्री जी, कार्यक्रम पसंद करने के लिए शुक्रिया। बाकी पंकज जी जितने बढ़िया कलाकार हैं उतने ही बेहतरीन इंसान भी। वे अपने आसपास की चीज़ों को बहुत ही गहराई से देखते हैं और ये उनके अभिनय में झलकता है। केसिंगा उड़ीसा से सुरेश अग्रवाल जी लिखते हैं, 26 अप्रैल के चेरी के देश से में पंकज त्रिपाठी से भेंटवार्ता का दूसरा भाग सुनने का सुअवसर मिला। ये संवाद न केवल अत्यंत रोचक था बल्कि कला और अभिनय की गहराइयों को समझने का एक समृद्ध माध्यम भी सिद्ध हुआ। पंकज त्रिपाठी जैसे सदे हुए अनुभवी और संवेदनशील कलाकार के विचारों को सुनना अपने आप में एक विशेष अनुभव है। उन्होंने जिस सहजता और गहराई से कला के विविध आयामों को प्रस्तुत किया वह हमारे मन को छू लेने वाला रहा। साथ ही कला के वास्तविक मायने क्या हैं जैसे प्रश्न पर उनका व्यवहारिक और जीवन से जुड़ा दृष्टिकोण प्रेरणादायक प्रतीत हुआ।
1: सुरेश जी, कार्यक्रम पसंद आया, जानकर बहुत अच्छा लगा। आपकी प्रतिक्रिया हमेशा ही बहुत गहरी होती है। आज आपने फिल्म के बारे में पंकज जी के विचार सुने, कैसे लगे जरूर बताएं। और देखिए, आरा बिहार से रामकुमार नीरज ने हमेशा की तरह 26 अप्रैल के कार्यक्रम की भी गहरी विवेचना की है। लिखते हैं, पंकज त्रिपाठी जी की जीवन यात्रा आज के युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अगर इरादा मजबूत हो तो रास्ते खुद बनते जाते हैं। जापान से जुड़ी उनकी स्मृतियां कार्यक्रम को और भी खास बनाती हैं।

0: लगता है।
1: और देखिए, पश्चिम बंगाल पूर्व बर्धमान से प्रदीप बसाक ने 28 अप्रैल को एक फेसबुक पोस्ट देखी जो उन्हें बेहतरीन लगी। अपने पत्र में वे लिखते हैं, जापान की प्रकृति सचमुच अपने आप में एक जीवंत कविता है, और जब बात प्राचीन राजधानी क्योतो की आती है तो उसकी हरियाली और भी मन को मोह लेती है। हाल ही में वहाँ के एक बौद्ध मंदिर के चारों ओर फैली ताजी हरी मेपल पत्तियों की छटा ने जैसे मन को शांति और सौंदर्य के एक अलग ही संसार में पहुंचा दिया। मंदिर की प्राचीन संरचना, उसके चारों ओर लहलहाते मेपल वृक्ष और उन पत्तियों की हल्की हवा में सरसराहट, ये वातावरण केवल देखने का ही नहीं बल्कि महसूस करने का अनुभव देता है। यहाँ प्रकृति और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम दिखाई देता है जो मन को भीतर तक छू जाता है।
0: प्रदीप जी, अपने विचार साझा करने के लिए आभार। मित्रों, फेसबुक पर जापान के प्राकृतिक नज़ारों के, खासतौर से बासंती बहार के बहुत सारे वीडियो समय समय पर डाले जाते हैं।
1: आप सभी उन्हें देखकर आनंद लें और बताएं कैसे लग रहे हैं। इसी वीडियो पर उमेश कुमार शर्मा की भी फेसबुक टिप्पणी है, लिखा है, प्राकृतिक दृश्यों से भरा जापान सच में देखने योग्य है।
0: जरा ठहरिए, क्या नाम बोला? हाँ। उमेश कुमार शर्मा? हाँ। क्या वे हरियाणा नारनौल के उमेश जी तो नहीं है जिन्हें हम बड़ी शिद्दत से याद किया करते थे? बड़े दिनों बाद उन्हें हमारी याद आई।
1: कमाल है शंग्रीला जी, आपने खूब पहचाना, क्योंकि उनकी एक अन्य टिप्पणी में वे लिखते हैं, मैं नारनौल हरियाणा से उमेश शर्मा, आपकी हिंदी सर्विस का बहुत पुराना श्रोता हूँ। उस समय तो आप केवल रेडियो पर ही प्रसारण सुनाते थे, वेबसाइट पर कुछ वर्षों से ही आप अपने कार्यक्रम सुनाने लगे हैं। जब हम कार्यक्रमों पर अपनी टिप्पणियां भेजते तो आप उनके प्रत्युत्तर में मुझे जापान के विभिन्न क्षेत्रों की फोटो उसकी पुष्टि के लिए भेजते कि मैंने आपके अमुक कार्यक्रमों को सुनकर अपनी टिप्पणी आपको भेजी। मोबाइल पर आपके कार्यक्रम भी समय मिलने पर जरूर सुन लेता हूँ।
0: उमेश जी, चेरी के देश से कार्यक्रम में आपका दोबारा स्वागत है। आशा है आपकी उपस्थिति अब पहले की तरह ही नियमित रहेगी और हमें आपके पत्र मिलते रहेंगे, लेकिन फिलहाल घड़ी कह रही है कि आपसे विदा लें, तो अनुमति दीजिए अपनी सखी शांग्रीला जैन को
1: और कामायनी सिंह को
0: सायोनारा, नमस्कार।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: यह है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का आपके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से में। स्वीकार करें अपनी सखी शांग्रीला जैन का कोनिच्वा नमस्कार और आदाब।
1: सभी दोस्तों को कामायनी सिंह का भी कोनिच्वा नमस्कार। आज के अंक में हम लाए हैं आपके पत्र और हिंदी फिल्म जगत के अभिनेता पंकज त्रिपाठी से खास भेंट वार्ता का तीसरा और अंतिम भाग।
0: हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता पंकज त्रिपाठी बिहार दिवस कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए 24 मार्च को जापान आए थे। उनकी इस जापान यात्रा के दौरान हमें भी उनसे बात करके रंगमंच से उनके प्रेम और जापान यात्रा के उनके अनुभव जानने का मौका मिला। उनके साथ हुई इस बातचीत को हम दो अंकों में अपने श्रोताओं के लिए ला चुके हैं।
1: वैसे क्या आप जानते हैं, रुपहले पर्दे पर विविधतापूर्ण किरदारों से अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले पंकज त्रिपाठी की जीवन यात्रा भी उतनी ही रोचक और विविधताओं से भरी हुई है। बिहार के सुदूर ग्रामीण अंचल में एक किसान परिवार में जन्मे पंकज जी ने शुरू में होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और एक होटल में काम भी किया। इसी दौर में उनका रुझान रंगमंच की ओर बढ़ा और हमें मिला एक कमाल का अभिनेता। वहीं 1999 में एक नाटक में हिस्सा लेने के सिलसिले में उनके जीवन की पहली विदेश यात्रा जापान के लिए थी।
0: लेकिन ख्याति थोड़ी दूर थी और संघर्ष लंबा था। पटना में रंगमंच के 8 साल, फिर मुंबई में 8 साल तक छोटे छोटे बेनाम से रोल, टेलीविजन और एड फिल्मों में काम करते हुए उन्हें पहचान मिली गैंग्स ऑफ वासेपुर के सुल्तान से, जिसमें अपनी बोलती आंखों और दमदार अभिनय से पंकज त्रिपाठी ने लोगों के मन में गहरी छाप छोड़ दी। उसके बाद उनके हर किरदार में लोगों ने खुद को पाया, उसमें उन्हें एक अपनापन मिला। पंकज जी का व्यक्तित्व जितना मृदुल और सरल है, उतना ही सहज है उनका अभिनय।
1: उनसे हुई बातचीत के तीसरे अंक में आइए सुनते हैं उनके फिल्म जीवन से जुड़ी कुछ मजेदार बातें।
0: तो गांव की पगडंडी से चलते हुए रुपहले पर्दे तक का ये सफर कैसा रहा? क्या ऐसा कोई लम्हा आया आपने सोचा कि अब बस बहुत हुआ, अब कुछ और काम करते हैं, और ये संघर्ष जारी रखने की हिम्मत कहाँ से आई?
2: नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि अब बहुत हुआ बस छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं किसान परिवार से आता हूँ, गाँव में खेती बाड़ी किया है। हमें आदत है कि एक सीड को डाल के और 15 दिन प्रतीक्षा करते हैं कि वो पौधा बनेगा, और फिर 4-5 महीने प्रतीक्षा करते हैं कि उसमें फल आएंगे। तो कहीं ना कहीं से धीरज और धैर्य की ट्रेनिंग मुझे किसानी में मिल गई। तो ऐसा कभी नहीं आया, संघर्ष लंबा था और होना चाहिए। संघर्ष जितना लंबा हो, सफलता में आनंद उतना ही आता है या खुशी मिलती है कि हमने परिश्रम किया तो उसका परिणाम मिला। तो मेरा कभी मन नहीं दुखी हुआ, टूटा, हौसला रहा है बरकरार।
0: आप सहज अभिनय के लिए जाने जाते हैं, इस सहजता को बनाए रखने के लिए क्या कोई खास तैयारी की जाती है? कितनी मेहनत लगती है सहज बनने के लिए? सरल होना सबसे कठिन है,
2: कठिन
0: तो इसके लिए कितनी मेहनत लगती है?
2: मेहनत मेरी बुनावट वैसी है, तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका जैसा होगा, हार्डवेयर वैसा ही रिएक्ट करेगा। तो मैं सहज व्यक्ति हूँ और आर्ट में भी मैं सहजता चाहता हूँ कि वो कॉम्प्लेक्स ना हो। हर किस्म, हर स्तर का आदमी मेरी परफॉर्मेंस को, मेरी कहानियों को समझ जाए, कम कॉम्प्लिकेटेड हो। तो यस, एफर्टलेस जो बोलते हैं ना, कि सहज देखने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सहजता भी ऐसा नहीं है। दो प्रैक्टिस किया हूँ मैं और कर रहा हूँ आज भी।
0: तो आपने हर तरह का किरदार बखूबी निभाया, लेकिन आपके अंदर के कलाकार को सबसे ज़्यादा मज़ा कैसा किरदार करने में आता है?
2: जो रिलेटेबल हो, जो लाइफ से जुड़ा हुआ हो, पॉजिटिव हो, इंस्पायरिंग हो, जो प्रेरणा देने वाला हो। क्योंकि सिनेमा मनोरंजन के साथ साथ एक मुझे इंस्पिरेशन का भी मीडियम लगता है कि आप उससे आर्ट का, कलाओं का, वो पोइट्री हो, कहानी हो, कविता हो, सिनेमा हो, उसका एक पर्पस ये है कि आज दुखी जो व्यक्ति है उसके दुखी मन को एलिवेट कर दे, उसमें एलिवेटेड इमोशन ला दे, ताकि वो इंस्पायर हो और वो अपनी ग्रोथ की ओर आगे बढ़े।
0: तो गैंग्स ऑफ वासेपुर का सुल्तान, जिसने आपको एक पहचान दिखाई, और मिमी का, भानु का जो किरदार था जिसने आपको राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया, और मेट्रो इन दिनों का एक सेंसिटिव संवेदनशील पति, इन तीनों किरदार को अगर हम साथ रखें तो आपके दिल के करीब सबसे कौन है?
2: हाँ, मेरे दिल के करीब तो मेट्रो इन दिनों का होगा क्योंकि रिसेंट है और वो अर्बन कॉम्प्लेक्स है उस किरदार में, कि शहर में रहता है, मिड एज का हो चुका है, तो वो अर्बन कॉम्प्लेक्स है और वो कैसे लाइफ में स्पाइस भरने के लिए एक छोटी सी गलती करता है और उस गलती से क्या क्या परिणाम होते हैं, तो वो ज़्यादा कंटेम्प्रेरी कहानी है इसलिए वो, और रिसेंट है इसलिए वो करीब है। बाकी मिमी भी बहुत अच्छा है क्योंकि उसकी वजह से नेशनल अवार्ड मिला है, उसमें एक कमिटमेंट है उस किरदार में कि अगर वो कृति सेनन के किरदार को साथ देता है, अपने स्वार्थ के लिए जुड़ता है, लेकिन जब वो फंस जाती है तो उसके साथ थ्रू आउट खड़ा रहता है। उसका एक संवाद था कि वो बोलती है कि तुम भाग सकते थे मुझे छोड़ के, तुम गए क्यों नहीं, तो बोलता है कि हम ड्राइवर हैं मिमी जी, यात्री को बिठा लिया तो मंजिल पे छोड़ के ही जाते हैं, रास्ते चाहे जितने ख़राब हों। तो मैंने आपके इस परिस्थिति का एक जिम्मेदार मैं भी हूँ, तो मैं अभी जर्नी पूरी करके ही जाऊँगा। तो वो दुनिया में वैसे लोग होने चाहिए भानु की तरह, जो मिमी का किरदार है, कि तभी तो दुनिया बेहतर रहेगी, हम जब एक दूसरे के काम आएंगे, एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, हौसला देंगे।
0: आपने कहा कि स्क्रीन फटीग हो रही है लोगों को, फिर भी ओटीटी भी है, सिनेमा भी है, तो इन दोनों में क्या करना ज़्यादा मज़ा आता है आपको? और आने वाले समय भविष्य किसका है, सिनेमा का या ओटीटी का?
2: दोनों का है, ओटीटी तो एक प्लेटफॉर्म है, वो सिनेमा भी उस पर ही आता है, वो आसान है, वो आपके ड्राइंग रूम तक, आपके जेब तक है कि आप अपने जेब में कंटेंट निकाल के जब मन तब देख लीजिए। ग्रोथ तो दोनों का होगा और रीच, दोनों की रीच बढ़ रही है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है एक आम दर्शक के लिए, लेकिन अगेन वही बोलूँगा कि कितना स्क्रीन देखोगे, एक दिन आपको वापस आना ही पड़ेगा। अब हम घरों में करने लगे हैं ना कि डिनर के टाइम फोन रख दो, हम बातचीत, खाना खाते और बातचीत करते हुए खाएंगे, तो ये स्क्रीन हमारे जीवन में असुविधा तो पैदा कर ही रहा है। मोबाइल आया था, हमने बनाया था मोबाइल कि हम चलाएंगे, अब मोबाइल हमें चला रहा है।
0: तो फिल्म को चुनते हुए आप क्या चीज़ ध्यान में रखते हैं? अब आप उस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि आप अपना रोल तय कर सकते हैं, या आपको किस बैनर के साथ काम करना है, कहानी है, निर्देशक है, या किरदार, या सह कलाकार, क्योंकि वो अच्छा टीम वर्क होना भी ज़रूरी है, तो आप क्या किसको तवज्जो देते हैं?
2: अच्छी कहानी, कहानी रिलेटेबल हो, उससे जुड़ाव हो और मुझे एक्साइट करे, तो ऐसी अच्छी कहानी मिल गई तो मैं उसका हिस्सा बन जाता हूँ। आजकल नहीं मिल रही अच्छी कहानियाँ तो थोड़ा कम कर दिया है काम, या मुझे बहुत ज़्यादा नहीं करना है, मुझे जितना करना था कर लिया, अब सेलेक्टिव काम करना है, वही कहानी जो मुझे लगे कि हाँ इस कहानी का हिस्सा बनना है तो मैं जुड़ जाता हूँ, कर लेता हूँ।
0: शूटिंग से पहले मैंने सुना कि आप खिचड़ी खाना पसंद करते हैं, इसकी क्या वजह है?
2: नहीं, क्योंकि एक एक्टर के लिए उसका पाचन तंत्र सही होना बहुत ज़रूरी है, एक्टर के लिए नहीं, हर व्यक्ति के लिए, लेकिन कलाओं परफॉर्मर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपका इंस्ट्रूमेंट मेरा यही है, मेरे पास सारंगी, तबला, सितार, कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जिस इंस्ट्रूमेंट को मैं बजाता हूँ, परफॉर्म करता हूँ, वो मेरा शरीर है, और शरीर दुरुस्त रहेगा तभी मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगा। उसके लिए सबसे आवश्यक है पाचन, तो पाचन सही रहेगा तो सब सही रहेगा, इसलिए मैं खिचड़ी खाता हूँ।
0: तो ऐसी कोई भूमिका जो अभी भी आपका ड्रीम रोल है कि मुझे ये, क्योंकि अटल में आपने, मैंने जो देखा अटल जी के, आपने जो मैनरिज्म
2: जी
0: अपनाए हैं, उनके हाथ हिलाने का तरीका, सिर हिलाने, कमाल का था वो। तो ऐसी कोई भूमिका है जो अब भी आपका ड्रीम रोल है?
2: नहीं, ऐसी कोई भूमिका नहीं है, जो अच्छी स्क्रिप्ट लगती है उसी को ड्रीम स्क्रिप्ट बना लेता हूँ।
0: आपकी हिंदी इतनी शुद्ध है, और आज मीडिया हो या फिल्में, हर जगह भाषा का स्तर थोड़ा डगमगाया हुआ है, तो ऐसे में एक कलाकार की समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी हो सकती है? शब्दों में दिक्कत है।
2: शब्दों में बहुत ताकत है, इसलिए जब भी प्रयोग करें, इस्तेमाल करें, सोच समझ के करें कि शब्द जो है वो सम्मान भी दिलाते हैं और शब्द जो भी है जो है वो अपमान भी दिलवा देते हैं, तो इसलिए वाणी पे ना नियंत्रण होना अति आवश्यक है। और हम कम्युनिकेटर हैं, हम लोग, अगर हमारी कहानियाँ ज़्यादा लोग देखते हैं, मुझे ज़्यादा लोग जानते हैं, तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि मैं कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन, जीवन में भी वो बहुत ज़रूरी है, और उसको लेके अवेयरनेस होनी चाहिए एक कलाकार में, एक आम आदमी में भी।
0: पर ओटीटी की बात करें जो बहुत युवाओं में भी एक्सेसिबल है, पर उसमें तो काफ़ी भाषा का जो है स्तर काफ़ी नीचे है, तो क्या लगता है आपको कहाँ रोक लगनी चाहिए?
2: हाँ, ओटीटी मैम, अगर फिर सोचना देखना पड़ेगा कि ओटीटी जो है वो प्राइवेट व्यूइंग के लिए है, वो कम्युनिटी व्यूइंग की चीज़ नहीं है। तो प्राइवेट व्यूइंग में एक इंडिविजुअल की का फ्रीडम है कि वो प्राइवेट में क्या देखे। उसके लिए आपको अकाउंट बनाना होगा, पेमेंट एक्सेस करना होगा और फिर आप पर्सनल स्क्रीन पे देखें अपने। तो वहाँ चूंकि सेंसर नहीं है और उनको लगता है कि सोसाइटी को, समाज को जस का तस रखना है, समाज में जैसा है वैसा हम दिखा सकते हैं, सेंसर नहीं है। सेंसर क्यों नहीं है? क्योंकि ये कम्युनिटी व्यूइंग नहीं है। तो एक इंडिविजुअल के पास राइट्स हैं कि वो क्या खाए, वो क्या देखे, वो क्या पहने। तो इसलिए ये बहस जो है ना, शोर की एक स्टोरी टेलर के नाते मेरा सेल्फ सेंसर है कि मैं कहानी में कैसे दिखाऊंगा, कितना दिखाऊंगा, लेकिन उसके कई लोग फ़ायदा भी उठा लेते हैं। तो ये डिपेंड है इंडिविजुअल के ऊपर। आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बंद कर दीजिए।
0: एक चीज़ जो हमने भारतीय जो यहाँ रह रहे हैं उन्होंने नोटिस करी है कि आजकल भारतीय पर्यटक तो बहुत आ रहे हैं और जापान काफ़ी लोकप्रिय होने लगा है भारतीय लोगों में। तो आने वाले समय में क्या हम यहाँ पर जापान में फिल्मों की शूटिंग होती हुई भी देखेंगे? आपका क्या सुझाव है इस बारे में?
2: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि भारतीय सिनेमा इन टर्म्स ऑफ लोकेशन ग्लोबल हो ही रहा है, लोग जाते ही हैं। चूँकि वेस्ट ज़्यादा गए हैं, यूरोप ज़्यादा गए हैं, अब ईस्ट में भी आएंगे। अब ये अनएक्सप्लोर्ड है हमारे सिनेमा के लिए, यहाँ की लोकेशन कहानियाँ, तो ऑफ कोर्स आएंगे आने वाले समय में, मुझे दिख रहा है। जैसे भारत कहीं नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा था, वो हिंदी सिनेमा से अधूरा था। अभी लोम भेड़िया गई वहाँ पे, अमर कौशिक ने किया, चूँकि अमर कौशिक अरुणाचल में रहे हैं, बचपन पला बड़ा है। तो जब वहाँ नॉर्थ ईस्ट में आ रहे हैं तो फार ईस्ट में आएंगे ही थोड़े दिनों में। अब धीरे धीरे ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है हिंदी सिनेमा के लोकेशंस और कहानियाँ।
0: आखिरी अनुरोध, NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा पिछले 70 साल से निर्बाध प्रसारण कर रही है, दशकों से दुनिया भर से हमारे कई श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए कोई खास संदेश?
2: नहीं नहीं मैं तो काफ़ी प्रसन्न हूँ जानकर कि 70 सालों से जापान में हिंदी की सेवा एक लगातार प्रसारित हो रही है, बहुत मतलब प्रशंसा का योग्य है और आज तक आबाद रूप से कभी टूटा नहीं है इस क्रम। तो प्रशंसा के पात्र हैं NHK जो यहाँ का नेशनल प्लेटफॉर्म है। और थैंक यू सो मच, मुझे भी मौका दिया अपनी बातचीत साझा करने के लिए, और आप सबको शुभकामनाएं और थैंक यू।
1: हिंदी फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध अभिनेता पंकज त्रिपाठी के साथ 3 कड़ियों में प्रसारित बातचीत का ये सिलसिला आपको कैसा लगा जरूर बताएं। आपके पत्रों और प्रतिक्रिया का हमें इंतजार है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ये पत्र ले रही हूँ जिसे भेजा है मुंबई से मंजूश्री भंडारी ने। उन्होंने पंकज त्रिपाठी जी के साथ वार्तालाप को बेहद रोचक बताया। वे आगे लिखती हैं, जो सहजता उनके अभिनय में है वही बातचीत में झलक रही थी। फिल्मों के साथ साथ वे पाक कला में भी निपुण हैं, ये जानकर बड़ा अच्छा लगा। जापान को उन्होंने केवल एक पर्यटक के रूप में ही नहीं बल्कि एक कलाकार की दृष्टि से भी देखा। देश विदेश भ्रमण करते हुए वहाँ की लोक कलाएं, आचार विचार, खान पान पर विशेष ध्यान देना जरूरी है, तभी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपने जापानी लोक कला काबुकी के बारे में रोचक जानकारी दी। जापान में जिस तरह लोक कलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है वो काबिले तारीफ है। आशा है वहाँ बसे हुए भारतीय जापानी जीवन के अनुशासन को जरूर आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। पंकज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जिस तरह जापान में बिहार दिवस मनाया जा रहा है उसी तरह भारत के प्रांतों में भी जापान दिवस मनाया जाना चाहिए। चैरी के देश से कार्यक्रम में आप हमें विभिन्न कलाकारों के बारे में जानकारी देते हैं, उसके लिए धन्यवाद।
0: मंजूश्री जी, कार्यक्रम पसंद करने के लिए शुक्रिया। वाकई पंकज जी जितने बढ़िया कलाकार हैं उतने ही बेहतरीन इंसान भी। वे अपने आसपास की चीज़ों को बहुत ही गहराई से देखते हैं और ये उनके अभिनय में झलकता है। केसिंगा उड़ीसा से सुरेश अग्रवाल जी लिखते हैं, 26 अप्रैल के चेरी के देश से मैं पंकज त्रिपाठी से भेंटवार्ता का दूसरा भाग सुनने का सुअवसर मिला। यह संवाद न केवल अत्यंत रोचक था बल्कि कला और अभिनय की गहराइयों को समझने का एक समृद्ध माध्यम भी सिद्ध हुआ। पंकज त्रिपाठी जैसे सदे हुए अनुभवी और संवेदनशील कलाकार के विचारों को सुनना अपने आप में एक विशेष अनुभव है। उन्होंने जिस सहजता और गहराई से कला के विविध आयामों को प्रस्तुत किया वह हमारे मन को छू लेने वाला रहा। साथ ही कला के वास्तविक मायने क्या हैं जैसे प्रश्न पर उनका व्यवहारिक और जीवन से जुड़ा दृष्टिकोण प्रेरणादायक प्रतीत हुआ।
1: सुरेश जी, कार्यक्रम पसंद आया जानकर बहुत अच्छा लगा। आपकी प्रतिक्रिया हमेशा ही बहुत गहरी होती है। आज आपने फिल्म के बारे में पंकज जी के विचार सुने, कैसे लगे जरूर बताएं। और देखिए, आरा बिहार से रामकुमार नीरज ने हमेशा की तरह 26 अप्रैल के कार्यक्रम की भी गहरी विवेचना की है। लिखते हैं, पंकज त्रिपाठी जी की जीवन यात्रा आज के युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अगर इरादा मजबूत हो तो रास्ते खुद बनते जाते हैं। जापान से जुड़ी उनकी स्मृतियां कार्यक्रम को और भी खास बनाती हैं। उन्होंने टोक्यो को एक अत्यंत उन्नत और अनुशासित शहर के रूप में वर्णित किया। एक रोचक पहलू ये भी है कि पंकज त्रिपाठी स्वयं बहुत कम फिल्में देखते हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि वे अभिनय को केवल देखने से नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों से सीखते हैं।
0: वाह नीरज जी, आपने पूरा कार्यक्रम बड़े मनोयोग से सुना और हर पहलू को बड़ी गहराई से समझा भी। हमें भी यही लगता है कि पंकज जी जब खुद इतनी कम फिल्में देखते हैं तो उनका अभिनय एकदम मौलिक है, तभी तो उसमें एक अपनापन

0: सौंदर्य के एक अलग ही संसार में पहुंचा दिया। मंदिर की प्राचीन संरचना, उसके चारों ओर लहलहाते मेपल वृक्ष और उन पत्तियों की हल्की हवा में सरसराहट, ये वातावरण केवल देखने का ही नहीं बल्कि महसूस करने का अनुभव देता है। यहाँ प्रकृति और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम दिखाई देता है जो मन को भीतर तक छू जाता है।
1: प्रदीप जी, अपने विचार साझा करने के लिए आभार। मित्रों, फेसबुक पर जापान के प्राकृतिक नज़ारों के, खासतौर से वासंती बहार के बहुत सारे वीडियो समय समय पर डाले जाते हैं।
0: आप सभी उन्हें देखकर आनंद लें और बताएं कैसे लग रहे हैं। इसी वीडियो पर उमेश कुमार शर्मा की भी फेसबुक टिप्पणी है, लिखा है, प्राकृतिक दृश्यों से भरा जापान सच में देखने योग्य है।
1: जरा ठहरिए, क्या नाम बोला? हाँ। उमेश कुमार शर्मा? हाँ। क्या वे हरियाणा नारनौल के उमेश जी तो नहीं है जिन्हें हम बड़ी शिद्दत से याद किया करते थे? बड़े दिनों बाद उन्हें हमारी याद आई।
0: कमाल है शंग्रीला जी, आपने खूब पहचाना, क्योंकि उनकी एक अन्य टिप्पणी में वे लिखते हैं, मैं नारनौल हरियाणा से उमेश शर्मा, आपकी हिंदी सर्विस का बहुत पुराना श्रोता हूँ। उस समय तो आप केवल रेडियो पर ही प्रसारण सुनाते थे, वेबसाइट पर कुछ वर्षों से ही आप अपने कार्यक्रम सुनाने लगे हैं। जब हम कार्यक्रमों पर अपनी टिप्पणियां भेजते तो आप उनके प्रत्युत्तर में मुझे जापान के विभिन्न क्षेत्रों की फोटो इसकी पुष्टि के लिए भेजते कि मैंने आपके अमुक कार्यक्रमों को सुनकर अपनी टिप्पणी आपको भेजी, मोबाइल पर आपके कार्यक्रम भी समय मिलने पर जरूर सुन लेता हूँ।
1: उमेश जी, चेरी के देश से कार्यक्रम में आपका दोबारा स्वागत है। आशा है आपकी उपस्थिति अब पहले की तरह ही नियमित रहेगी और हमें आपके पत्र मिलते रहेंगे, लेकिन फिलहाल घड़ी कह रही है कि आपसे विदा लें, तो अनुमति दीजिए अपनी सखी शांग्रीला जैन को
0: और कामायनी सिंह को
1: सायोनारा, नमस्कार।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताज़ा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: यह है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। स्वागत है सभी श्रोताओं का आपके मनपसंद कार्यक्रम चेरी के देश से। मैं स्वीकार करें अपनी सखी शांगविला जैन का कोनिचिवा नमस्कार और आदाब।
1: सभी दोस्तों को कामायनी सिंह का भी कोनिचिवा नमस्कार। आज के अंक में हम लाए हैं आपके पत्र और हिंदी फिल्म जगत के अभिनेता पंकज त्रिपाठी से खास भेंट वार्ता का तीसरा और अंतिम भाग।
0: हिंदी सिनेमा के जाने माने अभिनेता पंकज त्रिपाठी बिहार दिवस कार्यक्रमों में शिरकत करने के लिए 24 मार्च को जापान आए थे। उनकी इस जापान यात्रा के दौरान हमें भी उनसे बात करके रंगमंच से उनके प्रेम और जापान यात्रा के उनके अनुभव जानने का मौका मिला। उनके साथ हुई इस बातचीत को हम दो अंकों में अपने श्रोताओं के लिए ला चुके हैं।
1: वैसे क्या आप जानते हैं, रुपहले पर्दे पर विविधतापूर्ण किरदारों से अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले पंकज त्रिपाठी की जीवन यात्रा भी उतनी ही रोचक और विविधताओं से भरी हुई है। बिहार के सुदूर ग्रामीण अंचल में एक किसान परिवार में जन्मे पंकज जी ने शुरू में होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया और एक होटल में काम भी किया। इसी दौर में उनका रुझान रंगमंच की ओर बढ़ा और हमें मिला एक कमाल का अभिनेता। वहीं 1999 में एक नाटक में हिस्सा लेने के सिलसिले में उनके जीवन की पहली विदेश यात्रा जापान के लिए थी।
0: लेकिन ख्याति थोड़ी दूर थी और संघर्ष लंबा था। पटना में रंगमंच के 8 साल, फिर मुंबई में 8 साल तक छोटे छोटे बेनाम से रोल, टेलीविजन और एड फिल्मों में काम करते हुए उन्हें पहचान मिली गैंग्स ऑफ वासेपुर के सुल्तान से, जिसमें अपनी बोलती आंखों और दमदार अभिनय से पंकज त्रिपाठी ने लोगों के मन में गहरी छाप छोड़ दी। उसके बाद उनके हर किरदार में लोगों ने खुद को पाया, उसमें उन्हें एक अपनापन मिला। पंकज जी का व्यक्तित्व जितना मृदुल और सरल है, उतना ही सहज है उनका अभिनय।
1: उनसे हुई बातचीत के तीसरे अंक में आइए सुनते हैं उनके फिल्म जीवन से जुड़ी कुछ मजेदार बातें।
0: तो गांव की पगडंडी से चलते हुए रुपहले पर्दे तक का ये सफर कैसा रहा? क्या ऐसा कोई लम्हा आया आपने सोचा कि अब बस बहुत हुआ, अब कुछ और काम करते हैं, और ये संघर्ष जारी रखने की हिम्मत कहाँ से आई?
2: नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि अब बहुत हुआ बस छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं किसान परिवार से आता हूँ, गाँव में खेती बाड़ी किया है। हमें आदत है कि एक सीड को डाल के और 15 दिन प्रतीक्षा करते हैं कि वो पौधा बनेगा, और फिर 4-5 महीने प्रतीक्षा करते हैं कि उसमें फल आएंगे। तो कहीं ना कहीं से धीरज और धैर्य की ट्रेनिंग मुझे किसानी में मिल गई, तो ऐसा कभी नहीं आया। संघर्ष लंबा था और होना चाहिए, संघर्ष जितना लंबा हो सफलता में आनंद उतना ही आता है या खुशी मिलती है कि हमने परिश्रम किया तो उसका परिणाम मिला। तो मेरा कभी मन नहीं दुखी हुआ, टूटा, हौसला रहा है बरकरार।
0: आप सहज अभिनय के लिए जाने जाते हैं, इस सहजता को बनाए रखने के लिए क्या कोई खास तैयारी की जाती है? कितनी मेहनत लगती है सहज बनने के लिए? सरल होना सबसे कठिन है,
2: कठिन
0: तो इसके लिए कितनी मेहनत लगती है?
2: मेहनत, मेरी बुनावट वैसी है तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका जैसा होगा हार्डवेयर वैसा ही रिएक्ट करेगा। तो मैं सहज व्यक्ति हूँ और आर्ट में भी मैं सहजता चाहता हूँ कि वो कॉम्प्लेक्स ना हो। हर किस्म, हर स्तर का आदमी मेरी परफॉर्मेंस को, मेरी कहानियों को समझ जाए, कम कॉम्प्लिकेटेड हो। तो यस, एफर्टलेस जो बोलते हैं ना, कि सहज देखने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, सहजता भी ऐसा नहीं है, तो वो प्रैक्टिस किया हूँ मैं और कर रहा हूँ आज भी।
0: तो आपने हर तरह का किरदार बखूबी निभाया, लेकिन आपके अंदर के कलाकार को सबसे ज़्यादा मज़ा कैसा किरदार करने में आता है?
2: जो रिलेटेबल हो, जो लाइफ से जुड़ा हुआ हो, पॉजिटिव हो, इंस्पायरिंग हो, जो प्रेरणा देने वाला हो, क्योंकि सिनेमा मनोरंजन के साथ साथ एक मुझे इंस्पिरेशन का भी मीडियम लगता है कि आप उससे आर्ट का, कलाओं का, वो पोइट्री हो, कहानी हो, कविता हो, सिनेमा हो, उसका एक पर्पस ये है कि आज दुखी जो व्यक्ति है उसके दुखी मन को एलिवेट कर दे, उसमें एलिवेटेड इमोशन ला दे, ताकि वो इंस्पायर हो और वो अपनी ग्रोथ की ओर आगे बढ़े।
0: तो गैंग्स ऑफ वासेपुर का सुल्तान, जिसने आपको एक पहचान दिखाई, और मिमी का, भानु का जो किरदार था जिसने आपको राष्ट्रीय पुरस्कार दिलाया, और मेट्रो इन दिनों का एक सेंसिटिव संवेदनशील पति, इन तीनों किरदार को अगर हम साथ रखें तो आपके दिल के करीब सबसे कौन है?
2: हाँ, मेरे दिल के करीब तो मेट्रो इन दिनों का होगा क्योंकि रिसेंट है और वो अर्बन कॉम्प्लेक्स है उस किरदार में, कि शहर में रहता है, मिड एज का हो चुका है, तो वो अर्बन कॉम्प्लेक्स है और वो कैसे लाइफ में स्पाइस भरने के लिए एक छोटी सी गलती करता है और उस गलती से क्या क्या परिणाम होते हैं, तो वो ज़्यादा कंटेम्प्रेरी कहानी है इसलिए वो, और रिसेंट है इसलिए वो करीब है। बाकी मिमी भी बहुत अच्छा है क्योंकि उसकी वजह से नेशनल अवार्ड मिला है, उसमें एक कमिटमेंट है उस किरदार में कि अगर वो कृति सेनन के किरदार को साथ देता है, अपने स्वार्थ के लिए जुड़ता है, लेकिन जब वो फंस जाती है तो उसके साथ थ्रू आउट खड़ा रहता है। उसका एक संवाद था कि वो बोलती है कि तुम भाग सकते थे मुझे छोड़ के, तुम गए क्यों नहीं, तो बोलता है कि हम ड्राइवर हैं मिमी जी, यात्री को बिठा लिया तो मंजिल पे छोड़ के ही जाते हैं, रास्ते चाहे जितने ख़राब हों। तो मैंने आपके इस परिस्थिति का एक जिम्मेदार मैं भी हूँ, तो मैं अभी जर्नी पूरी करके ही जाऊँगा। तो वो दुनिया में वैसे लोग होने चाहिए भानु की तरह, जो मिमी का किरदार है, कि तभी तो दुनिया बेहतर रहेगी, हम जब एक दूसरे के काम आएंगे, एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, हौसला देंगे।
0: आपने कहा कि स्क्रीन फटीग हो रही है लोगों को, फिर भी ओटीटी भी है, सिनेमा भी है, तो इन दोनों में क्या करना ज़्यादा मज़ा आता है आपको, और आने वाले समय भविष्य किसका है, सिनेमा का या ओटीटी का?
2: दोनों का है, ओटीटी तो एक प्लेटफॉर्म है, वो सिनेमा भी उस पर ही आता है, वो आसान है, वो आपके ड्राइंग रूम तक, आपके जेब तक है कि आप अपने जेब में कंटेंट निकाल के जब मन तब देख लीजिए। ग्रोथ तो दोनों का होगा और रीच, दोनों की रीच बढ़ रही है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ गई है एक आम दर्शक के लिए, लेकिन अगेन वही बोलूँगा कि कितना स्क्रीन देखोगे, एक दिन आपको वापस आना ही पड़ेगा। अब हम घरों में करने लगे हैं ना कि डिनर के टाइम फोन रख दो, हम बातचीत, खाना खाते और बातचीत करते हुए खाएंगे, तो ये स्क्रीन हमारे जीवन में असुविधा तो पैदा कर ही रहा है। मोबाइल आया था, हमने बनाया था मोबाइल कि हम चलाएंगे, अब मोबाइल हमें चला रहा है।
0: तो फिल्म को चुनते हुए आप क्या चीज़ ध्यान में रखते हैं? अब आप उस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि आप अपना रोल तय कर सकते हैं, या आपको किस बैनर के साथ काम करना है, कहानी है, निर्देशक है, या किरदार, या सह कलाकार, क्योंकि वो अच्छा टीम वर्क होना भी ज़रूरी है, तो आप क्या किसको तवज्जो देते हैं?
2: अच्छी कहानी, कहानी रिलेटेबल हो, उससे जुड़ाव हो और मुझे एक्साइट करे, तो ऐसी अच्छी कहानी मिल गई तो मैं उसका हिस्सा बन जाता हूँ। आजकल नहीं मिल रही अच्छी कहानी, या तो थोड़ा कम कर दिया है काम, या अब मुझे बहुत ज़्यादा नहीं करना है, मुझे जितना करना था कर लिया, अब सेलेक्टिव काम करना है, वही कहानी जो मुझे लगे कि हाँ इस कहानी का हिस्सा बनना है तो मैं जुड़ जाता हूँ, कर लेता हूँ।
0: शूटिंग से पहले मैंने सुना कि आप खिचड़ी खाना पसंद करती हैं, इसकी क्या वजह है?
2: नहीं, क्योंकि एक एक्टर के लिए उसका पाचन तंत्र सही होना बहुत ज़रूरी है, एक्टर के लिए नहीं, हर व्यक्ति के लिए, लेकिन कला परफॉर्मर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपका इंस्ट्रूमेंट मेरा यही है, मैं, मेरे पास सारंगी, तबला, सितार, कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जिस इंस्ट्रूमेंट को मैं बजाता हूँ, परफॉर्म करता हूँ, वो मेरा शरीर है, और शरीर दुरुस्त रहेगा तभी मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगा। उसके लिए सबसे आवश्यक है पाचन, तो पाचन सही रहेगा तो सब सही रहेगा, इसलिए मैं खिचड़ी खाता हूँ।
0: तो ऐसी कोई भूमिका जो अभी भी आपका ड्रीम रोल है कि मुझे ये, क्योंकि अटल में आपने, मैंने जो देखा अटल जी के, आपने जो
2: जी
0: मैनरिज्म अपनाए हैं, उनके हाथ हिलाने का तरीका, सिर हिलाने, कमाल का था वो। तो ऐसी कोई भूमिका है जो अब भी आपका ड्रीम रोल है?
2: नहीं, ऐसी कोई भूमिका नहीं है, जो अच्छी स्क्रिप्ट लगती है उसी को ड्रीम स्क्रिप्ट बना लेता हूँ।
0: आपकी हिंदी इतनी शुद्ध है, और आज मीडिया हो या फिल्में, हर जगह भाषा का स्तर थोड़ा डगमगाया हुआ है, तो ऐसे में एक कलाकार की समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी हो सकती है? शब्दों में कितना है?
2: शब्दों में बहुत ताकत है, इसलिए जब भी प्रयोग करें, इस्तेमाल करें, सोच समझ के करें कि शब्द जो है वो सम्मान भी दिलाते हैं और शब्द जो भी है जो है वो अपमान भी दिलवा देते हैं, तो इसलिए वाणी पे ना नियंत्रण होना अति आवश्यक है। और हम कम्युनिकेटर हैं, हम लोग, अगर हमारी कहानियाँ ज़्यादा लोग देखते हैं, मुझे ज़्यादा लोग जानते हैं, तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि मैं कैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन, जीवन में भी वो बहुत ज़रूरी है, और उसको लेके अवेयरनेस होनी चाहिए एक कलाकार में, एक आम आदमी में भी।
0: पर ओटीटी की बात करें, जो बहुत युवाओं में भी एक्सेसिबल है, पर उसमें तो काफ़ी भाषा का जो है स्तर काफ़ी नीचे है, तो क्या लगता है आपको कहाँ रोक लगनी चाहिए?
2: हाँ, ओटीटी मैम, अगर फिर सोचना, देखना पड़ेगा कि ओटीटी जो है वो प्राइवेट व्यूइंग के लिए है, वो कम्युनिटी व्यूइंग की चीज़ नहीं है। तो प्राइवेट व्यूइंग में एक इंडिविजुअल की का फ्रीडम है कि वो प्राइवेट में क्या देखे, उसके लिए आपको अकाउंट बनाना होगा, पेमेंट एक्सेस करना होगा और फिर आप पर्सनल स्क्रीन पे देखें अपने। तो वहाँ चूँकि सेंसर नहीं है और उनको लगता है कि सोसाइटी को, समाज को जस का तस रखना है, समाज में जैसा है वैसा हम दिखा सकते हैं, सेंसर नहीं है। सेंसर क्यों नहीं है? क्योंकि ये कम्युनिटी व्यूइंग नहीं है। तो एक इंडिविजुअल के पास राइट्स हैं कि वो क्या खाए, वो क्या देखे, वो क्या पहने। तो इसलिए ये बहस जो है ना, शोर की एक स्टोरी टेलर के नाते मेरा सेल्फ सेंसर है कि मैं कहानी में कैसे दिखाऊंगा, कितना दिखाऊंगा, लेकिन उसके कई लोग फ़ायदा भी उठा लेते हैं। तो ये डिपेंड है इंडिविजुअल के ऊपर, आपको अच्छा नहीं लग रहा है बंद कर दीजिए।
0: एक चीज़ जो हमने भारतीय जो यहाँ रह रहे हैं उन्होंने नोटिस करी है कि आजकल भारतीय पर्यटक तो बहुत आ रहे हैं और जापान काफ़ी लोकप्रिय होने लगा है भारतीय लोगों में। तो आने वाले समय में क्या हम यहाँ पर जापान में फिल्मों की शूटिंग होते हुए भी देखेंगे? आपका क्या सुझाव है इस बारे में?
2: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे, क्योंकि भारतीय सिनेमा इन टर्म्स ऑफ लोकेशन ग्लोबल हो ही रहा है, लोग जाते ही हैं। चूँकि वेस्ट ज़्यादा गए हैं, यूरोप ज़्यादा गए हैं, अब ईस्ट में भी आएंगे। अब ये अनएक्सप्लोर्ड है हमारे सिनेमा के लिए, यहाँ की लोकेशन कहानियाँ, तो ऑफकोर्स आएंगे आने वाले समय में, मुझे दिख रहा है। जैसे भारत कहीं नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा था, वो हिंदी सिनेमा से अधूरा था। अभी लोम भेड़िया गई वहाँ पे, अमर कौशिक ने किया, चूँकि अमर कौशिक अरुणाचल में रहे हैं, बचपन पला बड़ा है। तो जब वहाँ नॉर्थ ईस्ट में आ रहे हैं तो फार ईस्ट में आएंगे ही थोड़े दिनों में। अब धीरे धीरे ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है हिंदी सिनेमा के लोकेशंस और कहानियाँ।
0: आखिरी अनुरोध, NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा पिछले 70 साल से निर्बाध प्रसारण कर रही है, दशकों से दुनिया भर से हमारे कई श्रोता हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए कोई खास संदेश?
2: नहीं नहीं मैं तो काफ़ी प्रसन्न हूँ जानकर कि 70 सालों से जापान में हिंदी की सेवा एक लगातार प्रसारित हो रही है, बहुत मतलब प्रशंसा का योग्य है और आज तक आबाद रूप से कभी टूटा नहीं है इस क्रम। तो प्रशंसा के पात्र हैं NHK जो यहाँ का नेशनल प्लेटफॉर्म है, और थैंक यू सो मच, मुझे भी मौका दिया अपनी बातचीत साझा करने के लिए, और आप सबको शुभकामनाएं और थैंक यू।
1: हिंदी फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध अभिनेता पंकज त्रिपाठी के साथ 3 कड़ियों में प्रसारित बातचीत का ये सिलसिला आपको कैसा लगा जरूर बताएं। आपके पत्रों और प्रतिक्रिया का हमें इंतजार है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ये पत्र ले रही हूँ जिसे भेजा है मुंबई से मंजूश्री भंडारी ने। उन्होंने पंकज त्रिपाठी जी के साथ वार्तालाप को बेहद रोचक बताया। वे आगे लिखती हैं, जो सहजता उनके अभिनय में है वही बातचीत में झलक रही थी। फिल्मों के साथ साथ वे पाक कला में भी निपुण हैं, ये जानकर बड़ा अच्छा लगा। जापान को उन्होंने केवल एक पर्यटक के रूप में ही नहीं बल्कि एक कलाकार की दृष्टि से भी देखा। देश विदेश भ्रमण करते हुए वहाँ की लोक कलाएं, आचार विचार, खान पान पर विशेष ध्यान देना जरूरी है, तभी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपने जापानी लोक कला काबुकी के बारे में रोचक जानकारी दी। जापान में जिस तरह लोक कलाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है वो काबिले तारीफ है। आशा है वहाँ बसे हुए भारतीय जापानी जीवन के अनुशासन को जरूर आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। पंकज जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जिस तरह जापान में बिहार दिवस मनाया जा रहा है उसी तरह भारत के प्रांतों में भी जापान दिवस मनाया जाना चाहिए। चैरी के देश से कार्यक्रम में आप हमें विभिन्न कलाकारों के बारे में जानकारी देते हैं, उसके लिए धन्यवाद।
0: मंजूश्री जी, कार्यक्रम पसंद करने के लिए शुक्रिया। वाकई पंकज जी जितने बढ़िया कलाकार हैं उतने ही बेहतरीन इंसान भी। वे अपने आसपास की चीज़ों को बहुत ही गहराई से देखते हैं और ये उनके अभिनय में झलकता है। केसिंगा उड़ीसा से सुरेश अग्रवाल जी लिखते हैं, 26 अप्रैल के चेरी के देश से में पंकज त्रिपाठी से भेंटवार्ता का दूसरा भाग सुनने का सुअवसर मिला। यह संवाद न केवल अत्यंत रोचक था बल्कि कला और अभिनय की गहराइयों को समझने का एक समृद्ध माध्यम भी सिद्ध हुआ। पंकज त्रिपाठी जैसे सदे हुए अनुभवी और संवेदनशील कलाकार के विचारों को सुनना अपने आप में एक विशेष अनुभव है। उन्होंने जिस सहजता और गहराई से कला के विविध आयामों को प्रस्तुत किया वह हमारे मन को छू लेने वाला रहा। साथ ही कला के वास्तविक मायने क्या हैं जैसे प्रश्न पर उनका व्यवहारिक और जीवन से जुड़ा दृष्टिकोण प्रेरणादायक प्रतीत हुआ।
1: सुरेश जी, कार्यक्रम पसंद आया, जानकर बहुत अच्छा लगा। आपकी प्रतिक्रिया हमेशा ही बहुत गहरी होती है। आज आपने फिल्म के बारे में पंकज जी के विचार सुने, कैसे लगे जरूर बताएं। और देखिए, आरा बिहार से रामकुमार नीरज ने हमेशा की तरह 26 अप्रैल के कार्यक्रम की भी गहरी विवेचना की है। लिखते हैं, पंकज त्रिपाठी जी की जीवन यात्रा आज के युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश है कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, अगर इरादा मजबूत हो तो रास्ते खुद बनते जाते हैं। जापान से जुड़ी उनकी स्मृतियां कार्यक्रम को और भी खास बनाती हैं। उन्होंने टोक्यो को एक अत्यंत उन्नत और अनुशासित शहर के रूप में वर्णित किया। एक रोचक पहलू ये भी है कि पंकज त्रिपाठी स्वयं बहुत कम फिल्में देखते हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि वे अभिनय को केवल देखने से नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों से सीखते हैं।
0: वाह नीरज जी, आपने पूरा कार्यक्रम बड़े मनोयोग से सुना और हर पहलू को बड़ी गहराई से समझा भी। हमें भी यही लगता है कि पंकज जी जब खुद इतनी कम फिल्में देखते हैं तो उनका अभिनय एकदम मौलिक है, तभी तो उसमें एक अपनापन झलकता है।
1: और देखिए, पश्चिम बंगाल पूर्व बर्धमान से प्रदीप बसाक ने 28 अप्रैल को एक फेसबुक पोस्ट देखी जो उन्हें बेहतरीन लगी। अपने पत्र में वे लिखते हैं, जापान की प्रकृति सचमुच अपने आप में एक जीवंत कविता है, और जब बात प्राचीन राजधानी क्योतो की आती है तो उसकी हरियाली और भी मन को मोह लेती है। हाल ही में वहाँ के एक बौद्ध मंदिर के चारों ओर फैली ताजी हरी मेपल पत्तियों की छटा ने जैसे मन को शांति और सौंदर्य के एक अलग ही संसार में पहुंचा दिया। मंदिर की प्राचीन संरचना, उसके चारों ओर लहलहाते मेपल वृक्ष और उन पत्तियों की हल्की हवा में सरसराहट, ये वातावरण केवल देखने का ही नहीं बल्कि महसूस करने का अनुभव देता है। यहाँ प्रकृति और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम दिखाई देता है जो मन को भीतर तक छू जाता है।
0: प्रदीप जी, अपने विचार साझा करने के लिए आभार। मित्रों, फेसबुक पर जापान के प्राकृतिक नज़ारों के, खासतौर से वासंती बहार के बहुत सारे वीडियो समय समय पर डाले जाते हैं।
1: आप सभी उन्हें देखकर आनंद लें और बताएं कैसे लग रहे हैं। इसी वीडियो पर उमेश कुमार शर्मा की भी फेसबुक टिप्पणी है, लिखा है, प्राकृतिक दृश्यों से भरा जापान सच में देखने योग्य है।
0: जरा ठहरिए, क्या नाम बोला? हाँ। उमेश कुमार शर्मा? हाँ। क्या वे हरियाणा नारनौल के उमेश जी तो नहीं है जिन्हें हम बड़ी शिद्दत से याद किया करते थे? बड़े दिनों बाद उन्हें हमारी याद आई।